ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यं ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। माधव कृष्ण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस, सैल्यूटेशन टू द कॉस्मिक लाइट, एडोरेशन टू द डिवाइन मास्टर्स and welcome all of you. Nice to be again in the Vancouver, and I enjoy to go to the Stanley Park to take the lot of oxygen.

की अलकपुरी जी महादेव, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान, दीप नारायण भगवान, सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति।

Dvesh Varma Dev Ki Jai. Hindu Ram Samrat Satguru Swami Madhavan Ji Bhagwan Ki Jai. विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरन जी योगी राज की जय। आज की आनंद की जय।

विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। इस पर महाभारत गीता स्लोगन। सो यदा यदा ही टाइम टू टाइम द गॉड अपीयर ऑन दिस अर्थ द डिस्ट्रॉइंग द नेगेटिव एक्टिविटीज नेगेटिव थॉट्स एंड द डेवल्स मेंटेलिटी एंड गॉड इस्टैब्लिश दैट गुड हार्मोनी एंड पीस ऑन द अर्थ। परित्राणाय साधुनाम द टेकिंग केयर टू डिवोटीज एंड हु दे आर लाइक डेवल मेंटेलिटीज गॉड गिव देम पनिशमेंट। इट्स वेरी क्लियर वे दिस इज इन आवर माइंड है पॉजिटिव थॉट नेगेटिव थॉट अवर बॉडी है पॉइजन्स एंड नेक्टार्स सो विच वी कैन क्रिएट इट फॉर अस एंड फॉर अदर। सिमिलरली देर आर बोथ हैव इन साइड अवर इन माइंड सो मैन थिंग्स दैट इज वी लर्निंग दैट थिंग्स वी नीड पॉइजन और नेक्टार। सो दैट इज इज लेसन फ्रॉम दिस होल आई डोंट नो हाउ मेनी डेज वो रामायण was people was writing and reading and writing and reading and showing the cinemas, showing the serials, the playing the actors, how much the hard work they did and how much the time take to write the Ramayana, the Valmiki ji, how much time take to write the Tulsidas ji in Avadhi Bhasa before it was in Sanskrit, pure Sanskrit. Yesterday I was mentioning the slogan that is, no? मानिषात् प्रतिष्ठात्वम् अगम शाश्वती समः यत् क्रोंचात् देकं वधि काम मोहितम्। दिस इज द बिगिनिंग श्लोका फ्रॉम द रामायण एंड वाल्मीकि फ्रॉम हिज हार्ट इ केम दैट वर्ड बिकॉज दिस वॉज ही सा दैट्स वॉट दैट वॉज फ्रंट ऑफ हिम इट वॉज लाइक क्राइम वर्क। He was killing two birds were there and he killing one of them and as he kill it because his job to kill and eat the animals or birds. And second what was this? One is died and second was Vyoga. Na? He Udhav hame bata do kya yog se vyog bada hai. Yogiyon ki kutiya van mein hai. Vyogiyon ke hirde basat hai. He Udhav hame bata do. के योग से वियोग योग से वियोग वियोग से योग बड़ा है। दिस इज कृष्णा गोपीस वॉज द मेंशनिंग टू उद्धव जी। सो दैट इज इज अ लेसन फॉर ह्यूमन दैट इज इज व्हाट काइंड वी हैव इन आवर माइंड आवर फीलिंग्स मिनिमाइज ऑल द नेगेटिव थॉट्स ऑल द डिस्टर्बेंस ऑल द व्हाट कम इन द लाइक माइंड एंड वी वॉश अवे आवर सेल्फ and we clean ourselves, create good thought, create good harmony and friendship, family harmony. As well, Mahaprabhuji also mentioned in his golden jubilees or golden texts, golden teaching. Respect your parents and teachers as well, your master. Live in love and harmony with your family. This is how was Mahaprabhuji's golden teaching words. So Shiva Purana is a great glory for human. Mahabharata is Gita. If we read, then it comes. But a question was real or not? That was real. If we not believe, then we go to Takshila Nalanda library and read there how many and thousands of Indian. The scriptures and yogis and what called our katha preaching people day and night. Navishi Purana is mostly preaching now in India because now Shravan month. This is Shravan's month is dedicated to Lord Shiva and also the given mantra. Om.

0: नित्य प्रति सर्व प्रकार से बड़े उच्च वृत्ति से विशुद्ध वृत्ति से जो उसी ब्रह्म रूप में लिपायमान रहते हैं उन महान सद्गुरुदेव के चरण के कमे कोटि सत नमस्कार करके ये सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगति मोति सह सो हम स्वाहा ओम ह्यम हम सो हम स्वाहा ओम ह्यम हम सह सो हम स्वाहा सर्वर्दे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे दीन कर रहा हूँ वो हमारे सारे मनोरथ को सिद्ध करे ओम अग्नेर्वाक्मंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा ओम अग्नेर्वाक्मंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा ओम ह्रीं ऐं त्रैलोक्य मोहिनी चामुंडा महादेवी सुरासुर वंदनी ह्रीं ऐं स्वाहा ओम क्रीं कानेन्दी भेदनाय ओम अग्नेर्वाक्मंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा ओम अग्नेर्वाक्मंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा
1: चादर दे दो एक
2: नमः पा

0: सतगुरु भगवान की जय हो।
1: बोल दे मैं एक आध बोल दे फिर
2: बताओ थे
0: बोल ले
2: नहीं
1: हां ले ले।

0: नींद खा जरा जे
1: नींद वा वेम कर
0: मजो छे थोड़ी काटी के महाराज काटी
1: आ जा आ जा
0: आ जा आ
2: चलो आवाज बोलो साहब।

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवनपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी श्री महेश्वर सतगुरुदेव की जय।

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु श्री माधव कृष्ण भगवान की जय हो। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की जय हो।

0: की जय।
1: श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद गुरु देवा की जय। विश्व गुरु महामंदरेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद गुरु देवा की जय। श्री अलकपुरी सिद्ध परंपरा की जय।

भगवान की जय, श्री देव पुरुष महादेव की जय, श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय, श्री अलका पुरुष महादेव की जय।

0: हरियाम भगवान की जय। श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव की जय हो।
1: जुगा जुगा